0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, घड़ी की सुइयों ने बजा दिए हैं सुबह के पूरे 10 और मैं हाजिर हूँ आपकी सुबह को सुपर फ्रेश बनाने, यानी कि आपके अपने शो नॉन स्टॉप गपशप में। तो दोस्तों आज हूँ मैं आप सभी के साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों आज ये तारीख है 8 अक्टूबर, यानी कि मौसम का मिजाज देखिए, हवा में हल्की सी सिरहन, वो प्यारी वाली गुलाबी ठंड की दस्तक और खिली हुई सुनहरी धूप। लेकिन आज की सुबह एक और वजह से बेहद खास और फख्र से भरी है, क्योंकि आज पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना दिवस। आसमान में गूंजती वो गर्जना, लड़ाकू विमानों के वो करतब और हमारे जांबाज एयर वॉरियर्स का जज्बा, जिनकी बदौलत हमारी सरहदें और हमारा खुला आसमान पूरी तरह सुरक्षित है, उन सभी वीर जवानों को पूरे देश का सलाम। तो दोस्तों आज के इस घंटे में हम भी भरने वाले हैं बातों की एक शानदार उड़ान। जी हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि

वाह क्या कमाल की एनर्जी है इस गाने में। तो सब भारतीय वायु सेना का मोटो है नभः स्पृशं दीप्तम, यानी आकाश को गर्व से छूना। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जब हम छोटे थे तो आसमान को छूने का सपना हमारा भी कुछ कम नहीं था। याद है वो दिन जब हम गली या छत पर खेल रहे होते थे और अचानक ऊपर से आवाज आती थी घुर करके। जी हाँ, बस खेल वहीं रुक जाता था, बैट बॉल हाथ से छूट जाते थे और आंखें आसमान की तरफ, और जब तक वो नन्हा सा दिखता जहाज बादलों में छुप नहीं जाता था, हम पागलों की तरह हाथ हिलाते रहते थे जैसे पायलट हमारा ही इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों किस किस ने स्कूल की कॉपी के बीच के पन्ने फाड़कर वो नुकीले रॉकेट बनाए हैं जो क्लास में उड़ते कम थे और सीधे मास्टर जी की मेज पर जा गिरते थे। तो दोस्तों आज नॉनस्टॉप गपशप में सवाल यही है कि बचपन में जब हम छत के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता था तो आपकी क्या दीवानगी होती थी? क्या आपने भी हाथ हिलाकर टाटा किया है? और अगर आज आपको एक दिन के लिए प्लेन की चाबी मिल जाए तो आप कहाँ उड़ना चाहेंगे? बिल्कुल दोस्तों, मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि बचपन में जब छत के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता था तो आपकी क्या दीवानगी होती थी? क्या आपने भी हाथ हिलाकर टाटा बाय बाय किया है? और अगर आज आपको एक दिन के लिए प्लेन की चाबी मिल जाए तो आप कहाँ उड़ना चाहेंगे? तो दोस्तों जब तक आप फोन उठाकर नंबर डायल करें तो क्यों ना बातें जो शुरू कर चुके इस खूबसूरत नगमे के साथ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि दोस्तों अगला जो नगमा मैं सुनाने वाली हूँ तो इस सवाल को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका भी मन कहता होगा क्या? तो चलिए इस गीत के माध्यम से बता देती हूँ कि आपका मन इस सवाल के बारे में क्या कह रहा है।

0: तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए सुनते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार,
1: मैं शोभी शोकर बोल रहा हूँ कस्बा से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू दीदी। आप देखिए, आपने जो सवाल किया, देखिए मैं बोलूंगा वो प्लेन के बारे में। मैं हम लोग भी क्लास में स्कूल में तो सादा जो कागज है, अंकों का जो कागज है, वो हम लोग को उड़ाते थे। उसके लिए स्कूल से बहुत डांट डांट खाया था, क्योंकि हम लोग जब उड़ाते थे तो प्लेन तो वो हमको खाता थे, इसलिए हम लोग को डांट पड़ता था। दूसरी जो बात है, हम लोग का स्कूल के पास में एक घर था, वहाँ पर जाकर पढ़ता था, इसलिए बहुत डांट पड़ते थे। दूसरी क्वेश्चन जो किया था उसमें बोलूंगा दीदी, हम लोग का जब भी ऊपर से जब प्लेन जाता था ना, हम लोग भी टाटा कहते थे, क्योंकि हम लोग का मुझको लगता था जो पायलट बोलिए और जो भी पैसेंजर देख रहा है वो भी टाटा के
0: बिल्कुल क्योंकि हम लोगों को वही महसूस होता है उस वक्त।
1: एकदम दीदी, हम लोग को बच्चे थे उसलिए हम लोग को मालूम था जो वो भी टाटा करेंगे। और जो लास्ट जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा लगा था। मैं बोलूंगा जब भी हम लोग का जो ओ प्लेन का जब भी हम लोग का चाबी जब मिलेगा ना, मैं देखूंगा पहले तो आपका जो आकाशवाणी जो है वहाँ पर वो रेनबो में हम चल जाएंगे, देखेंगे हम लोग आप लोग कैसे जो आरजे जो सब आरजे जो है ना वो कैसे काम करते हैं, गान बोलिए, दूसरी बात है ये जो फोन रिसीव करना, कैसे से आप बात करते थे, इसे हम लोग देखेंगे। हम लोग वो आप लोग का जो ऑफिस जो है आकाशवाणी ईडन गार्डन के पास में, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लैंड करेंगे, प्लेन लैंड करेंगे ईडन गार्डन में। हम लोग आपका ऑफिस में जाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शौभिक जी, अपनी इच्छाओं को भी, सपनों को और अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: थैंक यू दीदी, थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, क्या बात है ना, सच में वो भी क्या दिन थे। ना कोई टिक टिक की चिंता, ना लगेज का वजन, और बस हाथ फैलाए और बन गए खुद ही सुपरमैन। तो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी भी एक उड़ान की तरह है। तो चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: तो चलिए दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके थे, ये सुनते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, सुप्रभात।
0: नमस्कार सुप्रभात,
1: शुभजीत बोल रहा हूँ बेलघोरिया से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी आज तो आपने एक ऐसी जगह छेड़ दी कि बचपन की यादों में चले गए। तो ऐसा कोई इंसान होगा जो बचपन में कागज से प्लेन नहीं उड़ाया नहीं हो और खेलते खेलते ऐसा टाइम ना आया हो जबकि वो जो आवाज है वो सुन के जो एक्साइटमेंट होती थी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि प्लेन जिसने पहली बार आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स जो है, विल्बर राइट और ऑर्विल राइट, उन्होंने कैसा सोचा होगा कि इंसान भी उड़ सकता है पक्षियों की तरह।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो और विल्बर ब्रदर्स जो राइट ब्रदर्स थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि बहुत बार फेल हुए। फेल जैसे नहीं बोलते हैं कि फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस। तो राइट ब्रदर्स को भी शायद एक टाइम पे पता नहीं होता होगा कि हम भी कभी आविष्कार कर सकेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे थे। और आज विमान यात्रा जितना एक साधारण चीज हो चुका है, बहुत इजी चीज लगता है, लेकिन उस समय वही चीज कितना आश्चर्य चीज होती होगी, कभी सोचा नहीं होगा कि इंसान उड़ भी सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे अगर कभी ऐसा लगता था बचपन में कि अगर मुझे मौका मिले कि पायलट तो हो नहीं पाए, लेकिन अगर मुझे मौका मिले कि मैं उड़ सकता हूँ मतलब प्लेन के साथ, तो मुझे ऐसे बर्फीली पहाड़ों के बीच से ऊपर से कहीं से भी, लेकिन बर्फीली पहाड़ मुझे देखना है ऊपर से, जैसे कि हाँ हिमालय से लेके जितने भी देश में एल्प्स, स्विट्जरलैंड के एल्प्स, और एक बहुत अच्छा नजारा आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, काराकोरम जो रेंज है जो भारत पाकिस्तान और चीन के सीमावर्ती इलाके हैं, वहीं से गुजरता है जो बाहर, वो काराकोरम इतना अच्छा दिखता है कि मैं जब भी यूट्यूब में देखता हूँ मुझे लगता है कि अगर कभी उधर जाने का मौका मिले तो काराकोरम, क्योंकि पायलट भी एक टाइम पे बोलते हैं कि वी आर क्रॉसिंग द काराकोरम रेंज, तो वो जो चीज है तो मुझे वो देखना है, और सारे मतलब होल वर्ल्ड में जितने भी बर्फीली पहाड़ है,
0: क्योंकि उन बर्फीली वादियों को देखने का जो मजा ऊपर से है वो कहीं और से नहीं आ सकता।
1: और स्पेशली जब सूरज उगता है उस टाइम पे जो नजारा है, क्योंकि जो सारा आकाश एक अलग ही कलर में आ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो चीज तो, और हर इंसान का देखिए उड़ने का सपना तो सब में है, मतलब लिटरल नहीं लेकिन मेटाफोरिकली उड़ने का मतलब कौन इंसान नहीं होता होगा जो अपना डेस्टिनी को एक ऐसी जगह में उड़ाना लेके चाहता होगा कि सबका एम्बिशन फुलफिल हो, सबका गोल फुलफिल हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सब उड़ना चाहते हैं। और मुझे याद है बचपन में हम लोग को एक ऐसे लिखाया जाता था स्कूल में, इफ आई वेर ए बर्ड। तो वही चीज है, तो सब उड़ना चाहते हैं, सब सीजन चाहते हैं।
0: बिल्कुल, आपने भी कहीं ना कहीं हमारी बचपन की यादों को ताजा कर दिया अपनी बातों के द्वारा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत जी, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:28:50 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला ये चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: আমরা আকাশবাণীর যে অফিসটা আমরা দেখা খুব ইচ্ছে ছিল, এইটুকুই বললাম। নমস্কার দিদি।
1: ধন্যবাদ।
2: तो दोस्तों, बातों की मस्ती के बीच आज एक बात दिल से कहने का मन है। जब हम सुकून से अपने घरों में चाय पी रहे होते हैं या दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, तब 30,000 फीट की ऊंचाई पर, सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर या फिर तपते रेगिस्तान में कोई हमारे लिए पहरा दे रहा होता है। और सिर्फ जंग में ही नहीं, जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आई, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप, आसमान में गूंजता हुआ वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का रोटर सबसे पहले उम्मीद बनकर पहुंचता है। छत पर फंसे लोगों के लिए वो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, भगवान का भेजा फरिश्ता होता है। आज 8 अक्टूबर को हमारी वायुसेना के उन सभी जाबाज जवानों को, महिला पुरुषों पायलटों को और उनके परिवारों को, जो हर पल सीना ताने देश के लिए खड़े हैं, और हमारा पूरा देश झुककर उन्हें सलाम करता है।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: से जुनून तक है जाना।
1: तो दोस्तों हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है, तो ये सुनते कि वो क्या कहना चाहती है। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार दीदी, मैं पायल बोल रही हूं, बेलघोरिया से।
1: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू। कैमन आछो तुमरा बोलो।
1: जी हम तो सब ठीक, और आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगी।
2: हाँ,
1: मोटामोटी दीदी। आज के टॉपिक की आज तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगी। जी हाँ, तो आज का विषय यही है कि आपने बचपन में कभी भी कागज के प्लेन बनाकर उड़ाए होंगे, और अगर आपको एक दिन के लिए प्लेन की चाबी मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी?
2: ओके दीदी, एक बार एक रिपीट करा जाए।
1: जी बिल्कुल, यही है कि अगर आपने बचपन में कभी भी तो कागज के प्लेन बनाए होंगे, तो आपने कभी ऐसा किया है? और अगर आपको एक दिन के लिए प्लेन की चाबी मिल जाए तो आप उस पर बैठकर कहाँ जाना पसंद करेंगी?
2: ओके, एक्चुअली दीदी अभी একটুখানি বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি হিন্দিটাই তো আমি ঠিক কমফোর্টেবল নই, ওর জন্য একটুখানি প্রবলেম হচ্ছিল আর কি বুঝতে।
1: तो अगर आपको एक दिन के लिए कहीं जाने का मौका मिले, प्लेन मिल जाए, एरोप्लेन हवाई जहाज, तो आप किस पर बैठकर वहाँ उस पर बैठकर कहाँ जाना पसंद करेंगी?
2: अच्छा, मैंने এটা আজকে एक्चुअली দিদি একটা বায়ুসেনা ডে সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে।
1: जी बिल्कुल।
2: ওকে ওকে, তো দেখো দিদি, বায়ুসেনা যে আজকে ডেটা রয়েছে, মানে এটা আমি যেটা হয় সেটা আমি বলবো, আমার যেটা চড়তে মানে বেশি ভালো লাগে, আমি ফেভার করি, সেটা হচ্ছে হেলিকপ্টার। ওকে, তো হেলিকপ্টার এই জিনিসটা আমার চড়তে খুব ভালো লাগে, যদিও আমি একবার চড়েছিলাম লাইফে, তো তার থেকে সেভাবে আর চড়া হয়ে ওঠেনি, কিন্তু হেলিকপ্টার যদি আমি আবারও সুযোগ পাই তো আমি চেষ্টা করব এই হেলিকপ্টারই আরেকবার।

0: করে চড়ার একটু প্রথম প্রথম একটু ভয় লেগেছিল অবশ্যই, কিন্তু তারপরে একবার চড়ার পর ভয়টা মোটামুটি কেটে গেছে, আর আশা আছে দেখি যদি পারি আরেকবার চড়ার খুব ইচ্ছে রয়েছে।
1: बिल्कुल, तो आपने उसमें चढ़ने के बाद पहाड़ों का जो पहाड़ी इलाके या कहीं भी आप जो आपने जो सफर किया था तो वहां से देखने पर कैसा लग रहा था आपको, उनकी ऊंचाइयों से अपने दुनिया को देखने का नजरिया क्या था आपका?
0: अच्छा, मैंने तो तुम ही बोल रहे हो गैले अभी कोठाय जेते चाहिए थी भाई এটা করে। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो হ্যাঁ বলছি দিদি, তুমি বলছো যে আমি যদি মানে বায়ুসেনায় এরকম একটা ডে যে সেলিব্রেট হচ্ছে, আমি যদি কোথাও যেতে চাই হেলিকপ্টার করে, তো কোথায় যেতে চাই সেইটা জিজ্ঞেস করছো? ওকে দিদি, আমি অ্যাকচুয়ালি হিন্দিতে খুব একটা বুঝি না, কমফোর্টেবল নই, তাই একটু প্রবলেম হচ্ছে, সরি। তো দেখো দিদি, আমি যদি যেতে চাই হেলিকপ্টার করে, তো ফার্স্টে আমি যেতে চাই সুইজারল্যান্ডে, কেন আমি কোনোদিন এই জায়গাটাতে যাইনি, তো ইচ্ছে আছে, সবার মুখে শুনেছি যে জায়গাটা খুব সুন্দর, তো আমি যেতে চাইলে ওই জায়গাতেই যেতে চাই।
1: বিলকুল, থ্যাংক ইউ পায়েলজি, জি জি থ্যাংক ইউ সো মাচ পায়েলজি, আমসে জুড়লে কে লিয়ে থ্যাংক ইউ। और दोस्तों, आज जब हम भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो वो पुरानी सोच हवा में उड़ चुकी है कि आसमान सिर्फ बेटों का है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट्स के कॉकपिट में बैठकर सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों के होश उड़ा रही है। बिल्कुल ऊंची, इतनी ऊंचाई पर जाकर इन सबका प्रेशर झेलते हुए हमारी महिला फाइटर पायलट्स आसमान में चीरती हुई उड़ान भरती है। तो वो सिर्फ एक प्लेन नहीं उड़ाती, बल्कि समाज की हर उस पुरानी बंदिश और सोच को एक झटके में तोड़ देती है। तो दोस्तों, ये वो नया भारत है जहां कोई बाप अपनी बेटी से ये नहीं कहता कि जमीन पर पैर रखो, बल्कि बड़े गर्व से कहता है, जा बिटिया, पूरा आसमान तेरा है। घर में अगर आपकी भी नन्ही गुड़िया बैठी है तो आज इसे गले लगाकर जरूर कहिएगा कि सपने देखने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती।

एक आवश्यक सूचना, अगले 2-3 घंटों के दौरान मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की बहुत संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आप जहां रहें सावधान रहें, सतर्क रहें।

तो दोस्तों घड़ी की सुइयां 11 की तरफ इशारा कर रही है और इसी के साथ हमारे आज के इस सफर यानी कि नॉनस्टॉप गपशप की यह खूबसूरत उड़ान अब अपनी सुरक्षित लैंडिंग की तरफ बढ़ रही है। आज हमने बात की कि हमारे जाबाज एयर वॉरियर्स का पराक्रम की, बचपन में छत से हाथ हिलाकर जहां देखने की उन मासूम यादों की और जिंदगी के उस हौसले की जो हमें हर दिन एक नई ऊंचाई छूने को कहता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन याद रखिएगा, मंजिलें कितनी भी दूर हो, रास्ते चाहे कितने भी घुमावदार हो, सफर में मुस्कुराते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। और जिंदगी के सड़क पर और हौसलों के इस आसमान में बस यूं ही चलते रहिए और उड़ते रहिए। तो दोस्तों मैं लेती हूँ आज के शो से विदा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ निभाइए और हाँ, गगनचुंबी सपनों के साथ इस खूबसूरत नगमे का आनंद लीजिए। इसी आशा के साथ मैं आपकी दोस्त आप सभी से लेती हूँ आप इजाजत और जाते जाते ये मधु तराना छोड़े जाती हूँ आप सभी को लिए। तो दोस्तों यूं ही मुस्कुराते रहिए और हाँ, खुश रहिए, अपनों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।

0: सेबीर इन्वेस्टर वेबसाइट देखून नॉइटो सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करून.
1: परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति.
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, लेकर हाजिर हूं विशेष कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति. और आज परियोजना प्रस्तुति में मैं आपसे बहुत सारी बातें साझा करूंगी जल जीवन मिशन से संबंधित. तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया ये फेलोशिप प्रोग्राम पूरे भारत में सभी ग्रामीण घरों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सुरक्षित पीने का पानी देने की गारंटी देता है. मुख्य बातें और उद्देश्य जो है वो ये है कि हर घर जल, हर ग्रामीण घर को चालू घरेलू नल कनेक्शन FHTC देना, सर्विस बेंचमार्क, हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर सुरक्षित पानी, पीने के पानी की पक्की सप्लाई सुनिश्चित करना, क्वालिटी और प्राथमिकता पर भी तवज्जो दिया जाता है, केमिकल कंटामिनेटेंट्स जो है वो जैसे कि आर्सेनिक और जो फ्लोराइड है से बहुत ज्यादा प्रभावित इलाके, सूखे की संभावनाएं वाले इलाकों और रेगिस्तानी इलाकों में पानी की सप्लाई पर फोकस करता है. और इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर और ग्राम पंचायत बिल्डिंग जैसी पब्लिक फैसिलिटी में नल का पानी पक्का करना. लंबे समय तक पानी की सुरक्षा पक्का करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिसर्च और इस तरह की जो तरीके हैं उसे लागू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और किया जा रहा है. ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करूं तो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर निर्भर रहना, पानी जो समितियां हैं गांव के अंदर पानी के सिस्टम की प्लानिंग, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के लिए बनाई जाती है. पब्लिक हेल्थ की बात करूं तो पानी से होने वाली बीमारियों को कम करने का टारगेट है, साथ ही उन महिलाओं और लड़कियों का समय और मेहनत बचाना जो पारंपरिक रूप से पानी लाती हैं. जल है तो जीवन है, जल है तो कल है.
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति, परियोजना प्रस्तुति.

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के दी रियल रेडियो पर, यानी कि म्यूजिकली योर्स पर हाजिर है लेकर तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का, यानी कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ तीन का तड़का मतलब ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और हाँ हाँ, आपको बता दूँ वेलकम फिल्म से भी एक गाना सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के जब हमें विराम देना होगा उस वक्त सुनाऊंगी। और ऐसा है कि शुरुआत करना चाहूंगी फिल्म बॉर्डर 2 के उस गीत के साथ जिसे आप सुनेंगे विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज में। इसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है मनोज मुंतशिर ने और संगीत बद्ध किया है विशाल मिश्रा ने।

इनका तड़का। चलिए अगला गाना भी इतना ही खूबसूरत है, या कह सकते हैं इससे भी ज्यादा। इसे हमने लिया है फिल्म एक दिन से। फिल्म का नाम एक दिन है। अरिजीत सिंह और तरन्नुम मलिक जैन की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार राम संपत।

फाहिम अब्दुल्ला के खूबसूरत आवाज में इस गीत को आपने सुना, फिल्म चांद मेरा दिल से। यह फिल्म रिलीज हुई है इसी साल 2026 में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार सचिन जिगर। और रुक करते हैं अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर, म्यूजिकली योर्स पर। आप सुन रहे कार्यक्रम तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और इसी के साथ ये भी बता दूं कि 3:30 बजे से आपके लिए रहेगा NCERT के का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। और मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अभी जा रही हूं। 7:02 से लेकर 8 बजे तक रहूंगी आपके साथ कार्यक्रम छाया लोक लेकर। तो फिलहाल अगला गाना कॉकटेल 2 से कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में। इरशाद कामिल ने बड़ी खूबसूरती से इसे कलमबद्ध किया है और संगीत का जादू मैजिक है प्रीतम चक्रवर्ती का।

विशाल मिश्रा, गीतकार विशाल मिश्रा, संगीतकार भी विशाल मिश्रा। अब आप सोच रहे ना कि वो कौन से फिल्म का कौन सा गाना है। अजी फिल्म का नाम बताती हूँ, आंखों की गुस्ताखियाँ। और गाना मैं क्या बताऊँ, खुद ही सुनिए ना।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:24:56 और बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के दिग्गज एक्टर अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे। आज सुबह गोवा में उनका निधन हो गया। 107 FM रेनबो के पूरी टीम की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वे किसी भी किरदार का अभिनय नहीं करते थे, अपितु उस पात्र को जीते थे। लगता था कि वो पात्र आपके आसपास ही कहीं रहता है। परिंदा, तिरंगा, वेलकम, अब तक 56 हो, या कोई, मैंने बहुत सारी ऐसी अनगिनत फिल्में हैं, वो हमेशा अपने सहज अभिनय के लिए याद किए जाएंगे। भारतीय सिनेमा के इतिहास की पुस्तक में कई पन्ने अब स्थायी तौर पर उनके नाम पर आरक्षित हो गए हैं। ऐसे थे नाना पाटेकर जी। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। फिल्म वेलकम से ये गीत, और इसके बाद ठीक इस गीत को सुनते सुनते रुख करेंगे हम NCERT के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग की तरफ। और इसी के साथ सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: सुनते हैं आज का सुविचार। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेक लाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं
3: समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह का आगाज होता है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार। आगे लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम के सितम्बर माह के मासिक श्रोता संवाद में श्वेता तंवर जी के साथ जेंडर समावेशन जैसे महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय पर चर्चा हुई, जो अत्यंत सार्थक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। समान अवसर, सम्मान तथा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अधिकार पर आधारित ये संवाद हमारी सोच को व्यापक बनाने वाला रहा।
3: आप आगे लिखते हैं, आपका यह मासिक कार्यक्रम विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
2: जी,
3: इसके माध्यम से उन्हें NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वे इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित होते हैं।
2: जी।
3: ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम विद्यार्थियों में जागरूकता, सकारात्मक सोच एवं सीखने की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस उपयोगी एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं हमारा आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल,
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलती है। आविष्कारों के बारे में जानने के साथ साथ भारत के अनमोल ज्ञान, संस्कृति और गौरवशाली विरासत की भी जानकारी मिली। हर प्रस्तुति कुछ नया सीखने और जानने की उमंग जगा देती है।
3: जी।
2: ऐसे शानदार, ज्ञानवर्धक और रोचक कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को हृदय से बधाई और साधुवाद।
3: और अगला संदेश हमें मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। तो लिखते हैं, प्रिय विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरी उमंग टीम और सभी श्रोताओं को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमें दिनांक 14/9/2026 का उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने एक प्यारे डॉगी के बारे में बताया जो अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 2 पर आधारित थी। वो कहानी हमें बेहद पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम पेश किया।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन ने लिखा है,
3: आपका कार्यक्रम उमंग हमें बड़ा सुंदर और शिक्षाप्रद लगता है, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी। हम इसके नियमित श्रोता हैं। आगे लिखते हैं कि जीवन को खुशहाल और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए एक पेड़ हर वर्ष अवश्य लगाएं। धन्यवाद।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
3: जी, तो श्रोताओ, इस क्रम में आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च सैनिक वीरता सम्मान परमवीर चक्र की।
2: जी।
3: वैसे परमवीर चक्र का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं इसके बारे में। श्रोताओ, परमवीर चक्र की स्थापना हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये सम्मान जल, स्थल और वायु में शत्रु पक्ष का सामना होने पर सैनिकों द्वारा दिखाई जाने वाली असाधारण वीरता और साहस दिखाने वाले भारतीय सैनिकों को प्रदान किया जाता है।
3: यानी ये विशिष्ट रूप से युद्ध भूमि में दिखाई गई सर्वोच्च वीरता को दिया जाने वाला सम्मान है। आपको बता दें श्रोताओं कि इसे सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है, और ये चक्र यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है।
2: जी, तो अजीत जी, अब बात करते हैं इसके डिजाइन की कहानी पर। इस पदक को डिजाइन किया श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी ने। वे स्विट्जरलैंड में जन्मी। उनका मूल नाम था एवानोन लिंडा। वहां वे रॉयल मिलिट्री अकादमी के भारतीय कैडेट विक्रम रामजी खानुलकर से मिली और उनकी जीवन संगिनी बनी।
3: जी हाँ श्रोताओ, वे भारतीय सैन्य परंपराओं और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित थीं।
2: जी,
3: उन्होंने भारतीय संस्कृति और सैन्य परंपराओं का गहरा अध्ययन किया था और वे एक बहुत अच्छी कलाकार भी थीं।
2: जी,
3: कला कौशल और भारतीय संस्कृति से अनुराग रखने के कारण उन्हें परमवीर चक्र को डिजाइन करने के लिए चुना गया।
2: ये कांस्य का गोल पदक है और इसे बैंगनी रंग के रिबन के साथ पहनाया जाता है। ये जानना बहुत रोचक होगा कि भारतीय सेना के इतिहास में पहला परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि श्रीमती सावित्रीबाई खानोलकर जी की बेटी कुमुदिनी शर्मा के देवर मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में बड़गाम की लड़ाई में वीरता दिखाने के लिए सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
2: बहुत रोचक। इस सम्मान की मूल भावना है कर्तव्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान। अजीत जी, क्या परमवीर चक्र केवल थल सेना के सैनिकों को ही दिया जाता है?
3: नहीं विमलेश जी, ऐसा नहीं है। ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन सदस्यों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो। यह भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता सम्मान है।
2: और इसे प्रदान कौन करता है?
3: परमवीर चक्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र केवल एक सैन्य पदक नहीं बल्कि भारत के उन वीर सैनिकों की स्मृति और सम्मान का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया।
2: भारत के वीर सैनिकों को हमारा नमन।
3: जय हिंद। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के बारे में। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: परमवीर चक्र पदक को डिजाइन किसने किया था? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है किसान की होशियारी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि किसान ने कैसे अपने चातुर्य और बुद्धिमत्ता से भालू से पीछा छुड़ाया और अपनी जान बचाई।
4: एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया।

0: भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
1: मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा।
0: भालू ने कहा,
2: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
0: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
2: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
0: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया, जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
2: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
0: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना, जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, भालू का सिर चकरा गया।

0: अभी आपने सुना ये हास्य प्रधान कार्यक्रम किसान की होशियारी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

0: नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।
1: लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं।
1: हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई, मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू बसंती, उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। हा? वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: आणि चल ना जल्दी कर ना,
1: हां जल्दी जल्दी उतर बड़ा,
2: हां
1: लक्ष्य यहां काट के लानी
2: है। अरे कहां जा रही हो बहनों, क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
3: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियां काटने।
2: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियां मत काटना
0: है? वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
2: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
3: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ।
3: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
0: और क्या
3: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ।
2: देखो इन जंगल के पेड़ों में ही तो प्राण बसे हैं कोसी के। आमा तुम तो जरूर जानती होगी, तुम बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनात के जंगल से? बताओ ना कि क्या रिश्ता है कोसी का हमारे पिनात के जंगल से?
3: आज से 40 साल पहले जब ब्याह कर मैं गांव आई थी, तब तो कोसी अपने उफान पर थी, और आज अब तब में उसके प्राण है। बेटा तू कौन है, कहां से आई है?
2: अब, आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
3: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा।
2: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
3: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो चलो
0: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। और अब इसी कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु,
1: अर्षद,
2: चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: バンパールバッツデイ、バンパールバッツデイ、バンパールバッツデイ、バンパールバッツデイ。
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 FM रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छायालोक। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे है और छायालोक में थर्सडे की रोज रहता है आपके लिए सेगमेंट नजारा फिल्मों का।
2: नजारा फिल्मों का।
1: नज़ारा तो नज़ारा है और अगर बात वो बॉलीवुड से जुड़ी हो तो फिर क्या कहने। चलिए आपको बता दूं कि आज नज़ारा फिल्मों का जो है उसको मैंने किस पे बेस किया हुआ है। स्कूल और कॉलेज पर फिल्माए गए जो आइकॉनिक गाने हैं उन सभी गानों को कोशिश करूंगी जो कि मैं 8 बजे तक आपको सुना सकूं, आप तक पहुंचा सकूं, बिल्कुल कोशिश करूंगी। और ऐसा है कि शुरुआत करना चाहूंगी उस गीत के साथ जो कि ज्यादातर म्यूजिक लवर्स का फेवरेट है, पहला नशा फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर। 1992 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको बता दूं कि आमिर खान, आयशा जुर्का, ये गाना जो है ना ये स्कूल कॉलेज के मतलब पहले प्यार का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसे देहरादून की स्कूल कैंपस के माहौल में दिखाया गया है। जो जीता वही सिकंदर 1992 में रिलीज हुआ था। मंसूर खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म

के छात्रों की आपसी राइवलरी साइकिल रेस और दो अलग अलग स्टेटस वाले स्कूलों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जाने दीजिए, वो तो फिल्म की बात है। फिलहाल हम 107 एफएम रेनबो पर जुड़े हैं दिल से दिल तक, यानी कि हमारा और आपका कनेक्शन होता है हार्ट टू हार्ट। और पहला गाना उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में, पहला नशा।

अब झूठ तो बिल्कुल मत कहिएगा, ये गाना सुनते हुए भला ऐसा कोई हो सकता है जो गाना सुनते सुनते गुनगुनाया ना हो इस गीत को? अजी गुनगुनाने पर ही तो डबल मजा आता है इस गाने को सुनने का। ऐसा है दोस्तों कि आपको बता दूं कि आज ये जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं नजारा फिल्मों का, जिसमें आपके साथ है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुन रहे हैं। अब सिलसिला आगे बढ़ाना है नजारा फिल्मों का जो सेगमेंट है उसमें, तो अगला गाना फिल्म कुछ कुछ होता है से। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1998, शाहरुख खान काजोल सेंट जेवियर्स कॉलेज के कूल और कलरफुल कैंपस के बैकड्रॉप में राहुल और अंजलि की नोकझोंक को दिखाता ये गाना बेहद पॉपुलर हुआ था। कुछ कुछ होता है ये फिल्म करण जौहर की ब्लॉकबस्टर फिल्म का पहला हाफ पूरी तरह से कॉलेज लाइफ, दोस्ती और लव ट्रायंगल पर आधारित है। तो देर ना करते हुए सुनते हैं इस गीत को, कुछ कुछ होता है का जो है इस फिल्म से ये गाना, जिसके बोल हैं ये लड़का है दीवाना। समीर ने बड़ी खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। वहीं आपको बता दूं जो पहला गाना आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में, पहला नशा जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, उस गीत को बड़े प्यार से कलमबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

जब ये फिल्म रिलीज हुआ था ना, तो मैं क्या बताऊँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है, ये जो गाने के बाद विसलिंग होता है ना, जो राहुल विसलिंग करता है फिल्म में, उसे पता नहीं कितने यूथ लड़कों ने जो है अपनाया था और एक स्टाइल ही बन गया था उस समय का, एक स्टेटस बन गया था कहीं पे भी, मतलब कॉलेज कैंपस में देखो लड़के जो है शाहरुख खान की तरह विसलिंग करने की कोशिश करते थे, कुछ तो कामयाब भी हो गए थे और कुछ आज भी जो है ट्राई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा अपने आप को अगर आप यूथ समझते हैं, बच्चा समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ईश्वर का वरदान है। तो ऐसा है दोस्तों, इस कार्यक्रम नज़ारा फिल्मों का, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं जिक्र करना चाहूंगी उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म का नाम है मैं हूं ना। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2004 और इस फिल्म में एक गाना था चले जैसे हवाएं, और अमृता राव, जायद खान, ये गाना जो है उन पे फिल्माया गया था। एंड आपको बता दूं कि बिना किसी सिंगल कट के वन टेक शॉट दार्जिलिंग के सेंट पॉल स्कूल, जो फिल्म में कॉलेज दिखाया गया है, के कैंपस में शूट किया गया था। और अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं भी लगे हाथ बता ही दूं आपको कि मेरा भी जो स्कूलिंग हुआ था वो दार्जिलिंग के डाउहिल में हुआ था। अब बात अगर मैं सेंट पॉल्स की करूँ तो क्यों, मुझे भी तो अपना स्कूल याद आएगा ही ना। चलिए अपने स्कूल की बात मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल रुक करते हैं इस गीत की ओर, के और वसुंधरा दास की आवाज़ में सुनते हैं अगला गाना मैं हूं ना से। जावेद अख्तर ने इसे कलमबद्ध किया है और अनुप मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया है।

वाओ, ऐसे गाने सुनने को मिले तो भला कौन नहीं सुने। कार्यक्रम छाया लोग, वैसे मुझे तो बेहद प्यार है ये दिल से दिल तक वाले चैनल के साथ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं, मतलब 24/7 ऑल डे ऑल नाइट रहता है म्यूजिकली योर्स हमारे साथ। और फिलहाल बता दूं कि अभी जो है आप कार्यक्रम सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर पर, ये बात और है, क्योंकि ये जो आप कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर पर सुन रहे हैं उसके पीछे कारण ये है कि आप ट्रांसमीटर के जरिए सुन रहे हैं रेडियो पर लाइव कॉमेंट्री बंगाली में IFA शील्ड फाइनल का खेल ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के बीच। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं अगला गाना मस्ती की पाठशाला फिल्म रंग दे बसंती से। यह फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2006, आमिर खान, सिद्धार्थ, शर्मन जोशी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लाइफ, मस्ती, युवाओं के बागी तेवर को AR रहमान के इस बेहतरीन म्यूजिकल ट्रैक पर दर्शाया गया है। और देर न करते हुए सुनवाती हूं आपको ये गीत नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम की आवाज में। प्रशंसा जोशी ने इस गीत को कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

0: कि जब प्रोग्राम ही आप सुन रहे हैं, जो विषय है आज का वो है कि कॉलेज और स्कूल कैंपस में फिल्माए गए जो गाने हैं उनको लेकर आज आप कार्यक्रम सुन रहे हैं छायालोक में। और इस सफर में आपके साथ है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। तो मैंने सोचा कि जब स्कूल कॉलेज के कैंपस में फिल्माए गए गानों पे बात हो रहा है तो क्यों ना किसी स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात कर लिया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान माउंट आबू के प्लस टू स्कूल के प्रिंसिपल श्री दिनेश भारती गोस्वामी जी। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर कार्यक्रम नजारे फिल्मों का जो सेगमेंट चल रहा है उसमें।
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत कर रही हूँ। और ऐसा है सर कि मतलब आप तो प्लस टू के प्रिंसिपल हैं, आपके मतलब आप भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो हम जानना चाहते हैं कि व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, आप जब स्टूडेंट थे कॉलेज में हो या स्कूल में, उस समय कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको बहुत अच्छा लगता था जो आज आप मिस करते हैं?
1: मैम, मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर का रहने वाला, और स्कूल लाइफ में मैंने छठी से बारहवीं तक रेजिडेंशियल स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है। तो वहाँ हमें, आज मैं खुद प्रिंसिपल हूँ लेकिन उस समय हमें प्रिंसिपल सर से बहुत डर लगता था। और वो जब आते थे, मतलब प्रेयर के टाइम में कभी कभार वहाँ आते थे, एकदम जो पूरा जो कैंपस होता था एमपी हॉल, पिन ड्रॉप साइलेंस। और कभी कभार जैसे मैथ्स के तो हमारे सर थे दूसरे, लेकिन वो उनका शौक था मैथ्स की, वो क्लास लेते थे कभी। तो आगे क्लास के अंदर वो टॉपिक लेके, जब कोई टॉपिक वो पढ़ाते और उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूले पूछते, तो फिर वो जैसे ही हम सोचते कि हमारा टर्न निकल जाए, मतलब इतना डर लगता था उन सर से। और थोड़ा मैथ्स फोबिया भी था उस समय, लेकिन आज जब इस पोस्ट पे मैं आया हूँ तो मुझे उस समय की जो स्कूल की एक उस पोस्ट की क्या मतलब इम्पोर्टेंस होती है, और वो आज मुझे वो फील हुई।
0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप चूंकि प्रिंसिपल हैं प्लस टू के स्कूल में, तो कभी ऐसा फील हुआ आपको कि बच्चे आपको देख के डरते हो कि सर आ रहे हैं, सर गुजर रहे हैं बगल से?
1: अभी तो मैम, पहले के टाइम में और अब में थोड़ा यूं फर्क है। मतलब पहले ये थोड़ा ज्यादा रहता था स्टूडेंट के अंदर के टीचर से, और उस समय स्कूल के अंदर भी पनिशमेंट अलाउ था।
0: अभी हाँ, अब पनिशमेंट अलाउ नहीं है, इसलिए डर भी थोड़ा कम गया है ना?
1: जी बिल्कुल। साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स है, गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनकी भी गाइडलाइन है, तो मतलब वो थोड़ा उसकी वजह से भी क्या वो पनिशमेंट का कम हो गया है, मतलब है ही नहीं बिल्कुल। मतलब उनका एक साइकोलॉजिकल तरीके से उनको ट्रीट करना, मतलब एज ए फ्रेंडली वे में, तो थोड़ा वो चीज कम हुई है।
0: अच्छा, अभी जब आप प्रिंसिपल बन गए हो, वो तो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया, लेकिन एज अ प्रिंसिपल आपको स्कूल में जो है क्या लगता है कि कौन से दो चार चीज जो है वो हर स्कूल में होना चाहिए, हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए?
1: मैम, हर स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई के साथ जो अदर एक्टिविटीज है,
0: को करिकुलर एक्टिविटीज,
1: जी सीसी एक्टिविटीज जो होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज, उनका भी मतलब जो टीचिंग है, लर्निंग है, उनके साथ उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि हर बच्चा जो है, ये जरूरी तो नहीं है कि वो पढ़ने में ही अच्छा हो।
0: बिल्कुल।
1: तो मतलब देर आर सो मेनी वेज, डिफरेंट वेज, लाइक स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, इस टाइप के, तो उसमें वो अपना कैरियर भी बना सकता है, अच्छे स्कोप है उसमें।
0: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो श्रोता इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे होंगे उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिला होगा, खास करके गार्जियंस को, जो कि ये सोचते होंगे कि मेरा बच्चा जो है वो 90 प्लस क्यों नहीं ला रहा है एग्जाम में। शायद आपकी बातों को सुनकर वो उनके मन में आए कि नहीं, मेरा बेटा जो है वो अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकता है, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए भी वो नाम कमा सकता है, जिंदगी में सफल हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भारती गोस्वामी जी, आप जुड़े राजस्थान माउंट आबू से, और फिर किसी रोज फिर चाहूंगी कि आप कार्यक्रम में जुड़े और अपने जो ओपिनियंस है वो साझा करें कार्यक्रम में, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुनने वाले भी खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: तो ऐसा है दोस्तों कि फिलहाल

हमारे साथ जुड़े थे राजस्थान माउंट आबू से प्रिंसिपल दिनेश भारती गोस्वामी जी, माउंट आबू के प्लस टू के प्रिंसिपल, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और फिलहाल आप सभी के लिए तारे जमीन पर फिल्म का टाइटल ट्रैक शंकर महादेवन, डोमिनिक और विवियन की आवाज में इस गीत को सुने। प्रसून जोशी ने बड़ी खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है शंकर ईशान लॉय ने।

0: ऐसा लगता है इस गीत को सुनने के बाद कि सब कुछ स्तब्ध हो गया है, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा है दोस्तों कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे फरिश्ते होते हैं, ये उस ओस की बूंद की ही तरह होते हैं, उन्हें बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और अब रुक करते हैं अगले गीत की ओर, और अगला गाना जो है आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009, और इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही अच्छे थे, और आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, आईआईएम बैंगलोर के कैंपस में फिल्माया गया ये गाना था ऑल इज़ वेल। इंजीनियरिंग छात्रों के हॉस्टल लाइफ और पढ़ाई के दबाव को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाता है। और इसी फिल्म का एक और गाना है, बहुत ही मतलब क्या कहूँ कि सुनना ज़रूरी है, और सुन के सुनना ही नहीं समझना भी ज़रूरी है। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम लाइट, गिव मी अनदर चांस टू प्रूव माई सेल्फ अगेन। ऐसा है कि ये गाना भी थ्री इडियट्स का ही है, और ये जो है गाना शर्मन जोशी, आमिर खान के कॉलेज क्लासरूम और कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स की मानसिक स्थिति और एजुकेशन सिस्टम के दबाव को बयां करता है। एक बेहद इमोशनल गाना है। राजकुमार हिरानी की ये फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक गहरी चोट करती है, और दोस्तों की जो कॉलेज के हॉस्टल वाली यादों को साथ में ताज़ा भी करती है। तो चलिए देर ना करते हुए सुनते हैं सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज़ में फिल्म थ्री इडियट से ये अगला गीत।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो,

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

द डिस्को सॉन्ग याद है? ये जो डिस्को सॉन्ग है ये फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से है. ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2012. वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा. ये फिल्म एक बेहद आलिशान और कॉलेज कैंपस में जो है बहुत सारे इस फिल्म के जो है शूटिंग की गई थी. और गाने में, खास करके इस गाने में भव्य कॉलेज ऑडिटोरियम और हाई प्रोफाइल स्टूडेंट लाइफ दिखाई गई है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर की ये फिल्म कॉलेज के ग्लैमराइज्ड रूप और कंपटीशन और लव स्टोरीज पर फोकस करती है. तो देर ना करते हुए सुनते हैं इस गीत को. और सिर्फ सुनना ही नहीं है, साथ में आपको गुनगुनाना भी है, गाना भी है. एंड इफ यू वॉन्ट टू डांस, आप बिल्कुल डांस कर सकते हो. इस गीत को आप सुनेंगे बनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन की आवाज में. अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है विशालन शेखर ने.

शुरू की घड़ी में समय उछला है 7:55 और जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम में मैं रहूंगी रात 8 बजे तक, यानी कि 5 मिनट शेष बजा है हमारे और आपके बीच में, और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम छायालोक में सेगमेंट नजारा फिल्मों का। और आज नजारा फिल्मों का मैंने वो सारे गाने आपको प्ले किया जो कि आइकॉनिक स्कूल कॉलेज सॉन्ग्स है और स्कूल कैंपस में जो है वो पिक्चराइज किए गए हैं, चाहे स्कूल के कॉरिडोर हो, क्लासरूम हो, कैंपस हो। और अब कार्यक्रम को

पांच मिनट जो बचा है उसमें कौन सा गाना आपको सुनाऊं? चलिए, मुझे याद आ रहा है 1991 में एक फिल्म रिलीज हुई थी. कौन सी फिल्म? फूल और कांटे, और अजय देवगन मधु की डेब्यू फिल्म थी ये. और अभी जो गाना आपके लिए प्ले करूंगी मैं, उसके बोल हैं, जिसे देख मेरा दिल धड़का. तो ये गाना जो है कॉलेज लव सॉन्ग, क्लासरूम कॉरिडोर और कॉलेज की सीढ़ियों पर डांस करते हुए फिल्माया गया है. तो इस गीत को मैं प्ले करूंगी और इसी के साथ आपसे आज्ञा लूंगी. फिर मुलाकात होगी किसी रोज किसी कार्यक्रम में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. ये कहना कैसे भूल सकती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने चारों तरफ खुशियों के फूल खिलाते रहिए.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: एक सौ सात FM रेनबो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति। वक्त हो चला है 8:03 और 11 सेकेंड। शो की शुरुआत में बहुत ही दुखद और स्तब्ध कर देने वाली खबर भारतीय सिनेमा जगत से बताना चाहूँगी कि हमारे चहेते बेबाक और असाधारण अभिनेता विश्वनाथ नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे। 75 वर्ष की उम्र में गोवा स्थित अपने आवास पर उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। परिंदा, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर से लेकर मराठी सिनेमा के ऐतिहासिक नाटक नट सम्राट और वेलकम तक नानाजी ने अभिनय की जो परिभाषा गढ़ी थी ना, उसकी गूंज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, किसानों और जरूरतमंदों के लिए उनकी जमीनी सेवा ने उन्हें एक सच्चा जननायक बनाया। पूरा देश और FM रेनबो परिवार इस महान कलाकार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जिंदगी का सफर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। फनकारों की यादें उनके काम के जरिए हमेशा हमारे साथ चलती है। बात जब नाना पाटेकर साहब को याद करने की हो और उनके उस जिंदा दिल बेबाक अंदाज को कैसे भुलाया जा सकता है। साल 1992 की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में उनका किरदार जय हम सबको जिंदगी का फलसफा सिखा गया था। इसी फिल्म का एक बेहद प्यारा गीत जिसपे खुद नाना जी की आवाज थी, डायलॉग भी थे और मस्ती भी शामिल थी। पर वो गीत सुनाने से पहले मैं आपको राजू बन गया जेंटलमैन की ही फिल्म से एक बहुत ही अच्छा गीत सुनाना चाहती हूँ, कुमार सानू की आवाज़ में और साथ में है उनके साथ ही। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

सच ही तो है, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो सफर जारी रहना चाहिए। तो चलिए, नाना जी की यादों को नमन करते हुए अब हम रुक करते हैं आज के हमारे रेगुलर सफ़र की ओर। और हम घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि वक्त हो चला है 8:11:44। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको, आज हम अपना फ़ोन नंबर, हमारा नंबर है 2213-1341, नंबर डाल करके आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी फरमाइश किया अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाइए और आपकी की हुई फरमाइश को हम ज़रूर प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो संगीत ही है ना, वही आपको सुकून दे सकता है ना।

वक्त तो चला है 8:19 और 19 सेकेंड, और शाम का मिजाज भी अब धीरे धीरे और गहरा और थोड़ा रुमानी हो रहा है ना। और जब शाम ऐसी हो तो दिल की बातें खुद ब खुद जुबान पर आ ही जाती। वैसे एक बात कहूँ, जिंदगी में इंसान हर परेशानी का इलाज ढूंढ ही लेता है, हर मुश्किल से बचकर निकल भी जाता है, पर जी हाँ, पर एक मर्ज ऐसा है जिसके आगे बड़े से बड़ा समझदार भी हार मान ही लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इश्क की। एक ऐसा रोग जिसमें कोई बचना ही नहीं चाहता, बल्कि हर कोई इसमें और डूब जाना चाहता है। साल 1991 की वह खूबसूरत सी फिल्म दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और पूजा भट्ट की वो खट्टी मीठी सी केमिस्ट्री, और उस पर नदीम श्रवण का बनाया हुआ वो जादू। इस गाने में वो तड़प है, वो मासूमियत है जो हर उस शख्स के दिल को छू जाती है जिसने कभी किसी से बेपनाह मोहब्बत की हो।

107 FM रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त प्रीति लेकर आई हूँ कार्यक्रम छाया लोग। और वक्त हो चला है 8:33 और 2 सेकेंड। चलिए मैं बता रही हूँ कि इश्क न है ना, जो जब अपनी हद पार कर देता है तो वो सिर्फ एक जज्बा नहीं रहता, वो एक इबादत, एक साधना बन जाती है। इबादत का वाले इस प्रेम की सबसे पवित्र मिसाल अगर इतिहास में किसी ने दी है तो वो थी मीरा। वो प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, बस एक अटूट समर्पण होता है। साल 1992 की फिल्म मीरा का मोहन, यह गीत जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ, दिल के सबसे कोमल कोने को छूता है। अरुण गोविल और अश्वनी भावे पर फिल्माया गया यह नगमा, जिसे संगीत के सुरों में ढाला था अरुण पौड़वाल साहब ने, और इस भजन नुमा रुमानी गीत को अनुराधा पौड़वाल और सुरेश वाटकर की आवाज़ों ने छुआ। मानो ऐसा लगा कि रूह खुद गुनगुना रही है।

वक्त तो चला है 8:55 और 31 सेकेंड और मेरे जाने का भी वक्त हो चला है। सुप्रीति आप सभी से कहती है टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। इसी तरह से खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आप मुझे लटका देंगे, दोबारा ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ।
1: আমরা শুনলাম ক্রান্তিবীরের সেই অবিস্মরণীয় সংলাপ নানা পাটেকরের। তিনবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন নানা পাটেকর, 2013 সালে পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন অভিনেতা। পরিন্দা, ক্রান্তিবীর, অগ্নিসাক্ষী, এই ধরনের ছবি, আরও কত ছবির কথা বলবো, রাজু বনগয়া জেন্টলম্যান, নট সম্রাট, ওয়েলকাম, স্পেশাল 26 মতো ছবিতে তার অভিনয় দর্শকদের মনে বিরাট করে জায়গা পেয়ে নিয়েছে। এবং যে কথাটা বলছিলাম যে কোনোদিন তিনি নায়ক হবেন সেটা কল্পনাতেও আনেননি, বলিউডে রাজ করে গিয়েছেন একদম নিজের ক্যারিশমায়, নিজের সিগনেচার টিউনে, এবং ভারতবর্ষের কোটি কোটি দর্শক সেটাকে আপন করে নিয়েছিল শুধুমাত্র